0: Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region.
1: मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ. कल रात्रि को आपका एयरपोर्ट पे आना ये अपने आप में बहुत बड़ा जेस्चर है और मेरी तरफ से मैं विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूँ. और आपके मंत्री से पूरा समय मेरे साथ रहे रात को, मेरे लिए खुशी की बात है कि 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और आपने एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है. मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ. न्यूजीलैंड के लोगों के बीच आकर उनका भारत के प्रति जो स्नेह है ये देखकर कोई भी व्यक्ति बहुत ही भावुक हो जाता है और मेरे मन को वो छूने वाला है और इसके लिए भी मैं बहुत आपका आभारी हूँ. ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है. आप जब भारत आए थे और FTA के शुरुआत हुई और इतने कम समय में पूरा न्यूजीलैंड एक साथ होकर के FTA को जमीन पे उतारना, इतने कम शायद ये दुनिया में पहली बार इतने कम समय में ये सफलता हुई होगी. और इसके लिए मैं आपके नेतृत्व को, आपकी सरकार को, आपकी टीम को हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ.
0: Speaking on the occasion, the New Zealand Prime Minister described Prime Minister Modi's visit as a historic milestone, marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. Later in the day, Prime Minister Modi will also interact with prominent business and sports personalities. In a reflection of the strong people-to-people ties that exist between the two countries, Mr. Modi will address a large gathering of the Indian diaspora today. The Indian Navy is all set to commission its sixth Project 17A indigenous stealth frigate Mahendragiri F-38 into its eastern fleet at Visakhapatnam in Andhra Pradesh today. The ceremony will be presided over by the Defence Minister Rajnath Singh. Union Home Minister Amit Shah has said the government is firmly committed to making the country's coastal security unbreachable. Mr. Shah made the remarks while reviewing the progress made in the establishment of the Bureau of Port Security, BOPS, along with the Union Minister for Port, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his Omani counterpart Badr bin Hamad al-Busaidi in Muscat yesterday and held discussions on various facets of the cooperation between the two countries. In a social media post, Dr. Jaishankar said the talks focused on trade, investments, connectivity, maritime technology, defence and cyber AI domains. Indian Railways has approved 206 crore rupees of Kavach deployment on 680 route kilometers of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. In the FIFA World Cup, Spain has booked its place in the semi-finals, defeating Belgium 2-1 in the second quarter-finals at Los Angeles Stadium in Inglewood, United States last night. In Wimbledon tennis, Czechia's Karolina Muchova will face competitor Linda Noskova in the women's singles final in London today. And that is the end of this news bulletin.

0: अवधि की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मैं आज आपसे एक आग्रह भी करना चाहता हूं, करूं? हां कहने में क्या जाता है। हमने कुछ समय पहले हमारी इंडियन डायस्पोरा के बच्चों के लिए एक नया प्रयोग किया है। हमारे बच्चे भारत को समझें और भारत की विविधता की बात दुनिया तक पहुंचे, इसके लिए हमने भारत को जानो क्विज इसकी शुरुआत की है। अभी इसका कर्टन रेजरी हुआ है और हमारे साथियों ने इसमें ही जिस एनर्जी से पार्टिसिपेट किया है, मैं वही देखकर बहुत प्रभावित हूं।
1: Defense Minister Rajnath Singh has said today that India is building a strong

0: மகளே, இங்க வரமா லீலா, பக்கத்துல டாக்டர் இருந்தா போய் கூட்டிய சொல்லுமா?
1: வேண்டாம் அண்ணா, வேண்டாம். இனி யாராலையும் என்ன காப்பாத்த முடியாது. கதை முடிய போகுது அண்ணா, முடிய போகுது.
0: உன்னை தூக்கி வளர்த்த என் கையாலேயே உன்னை பலி கொடுத்துட்டேன்.
2: आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन.
3: दिस इज आकाशवाणी. गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक. टुनाइट वी प्रेजेंट अ वीणा रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी.
2: डॉक्टर रामावरपु शरद बाबू और श्रीमती विजयलक्ष्मी की बेटी डॉक्टर आर माधुरी देवी वीणा वादन की शिक्षा अपनी माता जी वीणा गुरु श्रीमती रामावरपु विजयलक्ष्मी के पास प्राप्त की. आपने संगीत की बारीकियां सुप्रसिद्ध वीणा विद्वान डॉक्टर ई मणि शंकर शास्त्री से सीखी. मनोधर्म का पालन करते हुए वीणा पर लयबद्ध तरीके से रस और भाव का प्रदर्शन डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी की विशिष्टता रही है. वीणा वादन में आकाशवाणी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त डॉक्टर आर माधुरी देवी ने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है. आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है.
3: बॉर्न टू डॉक्टर रामावरपु शरद बाबू एंड लेट

0: डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है रीति गौड़ राग में संत त्यागराज की रचना नन्नो विड़ची कदलकुरा जो कि त्रिपुट ताल में निबद्ध है.
1: She next presents a composition of Saint Tyagaraja in Riti Gaula Ragam, Triputa Talam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है कापी राग में वनमालिया जी आर स्वामी की रचना जानकी रमणा है।
1: You have been listening to a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi in tonight's national program of music. She is accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the Mridangam and Sri Mavuduru Surya Prasad on the Ghatam. Continuing her presentation, Dr. Madhuri Devi will now present a composition of Vanamaliya J.R. Swami in Kapi Ragam Aditalam.

0: का धन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री महादासु येडुकोंडलू ने और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद ने। डॉक्टर रामवर्पु माधुरी देवी, आज के कार्यक्रम का समापन बेहाग राग में डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णाकृत तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Thaniyavartanam on the Mridangam by Sri Mahadasu Erukondalu and on the Ghatam by Sri Mavuduru Surya Prasad. Dr. Ramavarapu Madhuri Devi concludes her performance this evening with a Tillana of Dr. Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Behagragam Aditalam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही संपन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi. She was accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the mridangam and Sri Mavuduru Surya Prasad on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 386।